0: साज करे तन खे गावे को जीले फिर दे
1: गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हाथ राह दूर
0: कथ ना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी को

0: मानता है।
1: एक मूर्ख ने दर्शन कीन रूप अनेक,
0: खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक।
1: जे न जानी जे वेद और कतेब,
0: रूप रंग न जात पात सो जान ही कह जेब।
1: जात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन,
0: चक्कर बक्कर फिरे चतुर चक मान ही पुर दीन।
1: लोग दौड़ाएं के बिख जग जापी जे जाप,
0: आद देव नाद मूर्त थाप्यो सबे जय थाप।
1: आर मूपुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, संयोगत काल पुरख देश।
0: नराग
1: नरंग जग जात बात न नाम,
0: गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम।
1: आप भूमि का नस्त देख पुरख अवधूत,
0: गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत।
1: भांग न तिमिक पुरख पार,
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार।
1: सर्वंता सर्वंता सर्व ते अनपेख,
0: शास्त्र न जान ही जय रूप रंग अरेक।
1: परम वेद पुराण जाकर नित भाखत नित,
0: सिमरत प्राण।

0: लिखा
1: देखा टा
0: गंभ है नील है
1: अनाद है जात है जात है
0: प्रसाद
1: सर्वंगता सर्वं ख्याता सर्वं
0: ज्ञाता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणंग सर्वं त्राणंग
1: सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं योग्यता सर्वं मुक्ता
0: सावल शांत व प्रसाद
1: नरक नाशिस प्रकाश्य नंगं स्वरूपे भंगं बभूते
0: परमाथंग परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाद बभूते
1: नामेतर भंगितर काम निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
0: न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात
1: साकं श्रीकं मितो मीक सदैव प्रभा जय अजा है
0: भगवती शांत व प्रसाद
1: जा हर जूर के हाजर हजूर में सुसलाम है समस्त कलाम है
0: के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम
1: है के राज करहिंद है करीमल कुमाल है कृष्णल जमाल है
0: नीमल खिराज है गरीबल निवास है हरीफल शिकन है हिरासल फिकन है
1: प्रणा समस्त निवास गंजन गनीम रजाय करीम है
0: समस्त जुबा है के साहिब की राह है के नरकंग प्रणास है बैस्तुल निवास है
1: भगवान है बेसुरवान है तमाम तुम्हें जय समस्तल जी रहे
0: परंग परमेश
1: जमा कोली मैं करी मुल कमाल है जरूरत जमाल है
0: अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो बबूत है
1: मितो बसें के आतंक प्रभा के चलंग नांग के मितो भंग है
0: मंद पार शांत व प्रसाद
1: मनवान प्रणाम गुरुगान मदाम और ब्रंगान जरनर पर पंज
0: अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हरनर अखंड वरनर अमंड
1: भवनाश मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम
0: अनशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उधार
1: जल थल मन दस्व सपन जल थल मन दस्व बेअंत
0: अनुभवनास त्रितत्व रास आचान बाहो एक सदा
1: ओंकार आदि कथनी नाद खल खंड ख्याल

0: जाके करण है मन माने जग जाने है
1: सरभंग पर है सरभंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है
0: नाकरम संग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
1: ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है कर्णाकर है
0: जपा जाप है तपा ताप है कृता कृता अमृता अमृत है
1: अमृता अमृत है कर्णाकृत है कृता कृत है तरणी धृत है
0: ईश्वर है परमेश्वर है कृता कृता अमृता अमृत है
1: अजपा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है कल
0: करुणालय नृपनायक है सर्वपायक है
1: पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है
0: सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुचंग पयात शंद
0: नमो सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे
0: नमो राशन ताम शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुद नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बपुते
0: लंका रूपे अलंकार लंके नमो आशासन बंग बंके
1: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरभंगी तरकाले अनंगी अकामे एक श्री शांत
0: जय लय पय पय
1: अभू अजू अनास कास
0: भंज भंज लख पख
1: अकाल दयाल लेख पेख
0: नाम काम गा हटा
1: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
0: नारागिन रंगिन रूपिन रेखे
1: अकर्मंगा परमंगा गंजे अलेखे पुचंग पयात शंद
0: मस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाश्य गंजल नामे समस्तल निवासी
1: निर्कामंग बैपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी सधर्मंग बैपूते
0: सदा सचदान अस्तरंग प्रणाशी करिमुल्क नंदा समस्तल निवासी
1: जाए बैपूते गरी हरियम करियम करीम रही में
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भोगते सुजम्भव शुभम सर्वदा सर्व

0: प्यासा।
1: तो मैं शाद कोई वरना त्याऊं जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं।
0: सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारिय
1: है। आपाद है मुझे उभरी है मरण काल का त्रास नुवरी है।
0: मुझो सदा हमारे पक्षा सिरिया सो जो करे हो रक्षा।
1: राख ले हो मुझे राखन हारी।

0: पावत पिता।
1: ताको कृपा हनि अनुमानत महामूर कछ भेद न जानत।
0: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव।
1: आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती।
0: तुमरा लखा न जाए पसारा के भी सजा प्रथम संसारा।
1: एक रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कही भूपा। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट प्यो संकरी कैठा।

0: अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया
1: जी जन सब तो दुपाए वेख प्रसन आया
0: लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
1: कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया
0: की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना
1: लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना
0: तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना
1: गुर प्रसाद जिनी आप तजार

दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा यह बेनंती सुन प्रभ मेरी देह नाम करे अपने चेरी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाहू जिस पास बैठे आ सोही है सबना दावे साहू सुकोटल गुरसेवी है हंस सहज सुभाए दर्शन परसें

0: भाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजन कृपा भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय त्रंदा महंदा पहला
1: मानस काणे करे निवास श्री।

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास बिसंबर एकै नाम जपत अगनत अनेकै वेद पुराण सिमर सुध्याखर की।

न लागै प्रभु के सिमरन अंदन जागै प्रभु के सिमरन भावना व्यापै प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै प्रभु का सिमरन साधकै संग सर्व निधान नानकर रंग प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन जपता पूजा प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ शिनानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी प्रभु के सिमरन होए सो भला प्रभु के

प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उदरे मूचा, प्रभु का सिमरन तृष्णा बूझा, प्रभु का सिमरन सब कुछ सूझा, प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए, प्रभु जी बसे।

प्रभु सिमरत निरंत कनेरे, प्रभु सिमरे बसेर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कबू ना झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विघासन, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरे से जन जन को प्रभ मया, नानक तिंजन शरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौंकुंड जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमरन हर कारण करना, हर सिमरन की सगल कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जैसे आप।

के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुआ नाम तेरे संग सहाई जय मां प्यान दूध जम दलै दे केवल नाम संग तेरे चला जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम किन माए उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पाप पर रह गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सकल सृष्ट को राजा दुखी हर का नाम जप तो सुखी अला करोरी बंधन पर हर का नाम जप निस्तरा अनक माया रंग तिखना बुझा वैर

ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाई है साधक संग जे मार के गन जाय को सर खनामुआ संगतो साहब जे पेंडे में अंध गुबारा का नाम संग जरा जा पंत को नस जानू अर का नाम ते नाल पछाणू जा मान ध्यान तत् बहु काम ते अर के नाम की तू मुँह पर शाम जात रखा मन तुझे आकरख्या ते नानकर अमृत बरख्या भगजना की बर्तन नाम समझना के मन बिसरा अमर का नाम दास की ओट नर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात अर रख साधक मात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मंता रंग रते रंगे के नानक जन कै बिरत बवेक हर का नाम जन को मुक्त जुक्त हर के नाम जन को तृप्त भुक्त हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जप का परे न भंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन सुबह पाई हर के नाम जन को भोग जोग हर नाम जप कृष्णाय वियोग।

पौ शास्त्र भो सिमृति पेख्य सर्व टंडोल पूजश नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास क्रम धर्म क्रिया सकल त्याग बन मध्य फिरे अनेक प्रकार किए बहु जतना बूंदा नो मैं बहु रतना श्री कटायो मैं कर राति वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नौखंड पृथ्वी फिरै चिर जीव है माओ दास भी सिर थी वै मैं उत पुराण कनक सहवै वर भूम दान न्यूली कर्म करै बवासन जैन मार्ग संयम साधन निमक निम कर श्री कटावै तो भी हो मैं मैल न जावै अर कह नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जुत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गुरु घुमाना मन ते उठै सोच करे दिन सह रात मन की मैल न तन ते जात इस दे को साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरै।

चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुनै मिथ्या स्पर्धन है मिथ्या नित्र पर तरया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार गुतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तनि पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साखत की यार जासाज बिना क्यों वसूचा बिरथा नाम बिना तनयंद मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपण के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बसु हर नाव नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कश्यवर कमावत मानी प्रीत मुखो गंड लावत जन हार प्रभु परवीन बार भेग न गाओ भीन और उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तुसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण प्राता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आपे माने आपे आप आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव से हम सब ते रहत सब की जाने आत्म की रहत जिस पावै तसलै लड़ लाए थान थनंतर समाए सो सेव जिस कृपा करी निमख निमख जप ना।

जे प्रसाद रूखन चंदे ही लिवलावत सराम सुने जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सकल सदर ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुँचै मन सा सा सिमरो प्रभु चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक दा की भगत करे। जे प्रसाद आप भूखन पहरिजै मन ते सिमरत क्यों आलस कीजै। जे प्रसाद असा सुवारी मन तिस प्रभु को कबूना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तनारा।

ब्रह्म ज्ञानी सदानंद लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदानंद दुख जैसे सूर्य सर्प को सुख, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य मान जैसे राय रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर जीक जो बसुद्धा को खोदे कु चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी के एह गुनाव नानक जो भाव कै सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मनोय प्रकाश जैसे धर उपरे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा मन अपने सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नान जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सल किरीना आत्मरस, ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संसल उदार नानक, ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी का चिंता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर।

कैकोड़ाचार्य बिहारी कैकोड़पा तीर्थवासी कैकोड़ बन पर मेहदासे कैकोड़ वेद के श्रोते कैकोड़ तीसरो होते कैकोड़ आत्म ध्यानता रहे कैकोड़ कब का विचार है कैकोड़ नवतन नाम ध्याव नानक कृत्य कंत न पाव कैकोड़ वे मनी कैकोड़ अंध ज्ञानी कैकोड़ कृपण कठोर कैकोड़ अभिव्या तुम निकोर कई कोड़ पर दरो गुहे रहे कई कोड़ पर दुख न करे कई कोड़ माय शरमाए कई कोड़ पर देश फरमाए जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोड़ से जति जोगी कई कोड़ राज रस भोगी कई कोड़ पंखी सर्व पाए कई कोड़ पात्र विघ्न बजाए कई कोड़ पौन पानी बस अंतर कई कोड़ दे सोमंडल कई कोट ससिर सुवर्ण खेतरे कई कोट देव दान इंद्र से छात्र सगल समग्री अपने सुतार नानक जिस जिस भाव तिसने सुतारे कई कोट राज तम सातक कई कोट वेद प्राण समृत अरसासत कई कोट कीर्तन समुद कई को नानक प्रकार जंत कई कोट के चल जीव कई कोट गिरी मेहर सुन थीव कई कोट जक निर्पसाच कई कोट भूत भेत भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते नीरा सब ते दूर नानक अलिपत रहा भरपूर कई कोड़ पाताल के वासी कई कोड़ नरक निवास कई कोड़ जन्म जीव मरे कई कोड़ बोझ नहीं फिरे कई कोड़ बैठती गाए कई कोड़ कल थक पाए।

हृदय को होए। सचकरणी सचता की रात सच हृदय सतमुख सचि दृढ़ सच आकार सच वृत्ति सच अपसार पाल ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किच त्रै गुंते प्रभिन्न तिसे भुजाए नानका जिस हुआ सो प्रसन्न अष्टपदी अवनासी ब्रह्मन में राख मानु की तू प्रीत्याग तिस्ते पर किस को शर्म ग्रंथर को सोय आपे बिना आपे दाना गैर कबीर गए सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद कृपा ध्यान दयाल बख्शंद सात्रे की चरणी पाओ नानक की मन रे अन्ना मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरण परम जागने तरफोर तिसका मंत्र जाने होर अनद्रु मंगल सजा मंगल सजा के सर्वशोक निय करता के राज में राज योग में जो गीता मत विसर विस्म पोगी त्याय ते भगत सुख पाए नानक तिस पुरख नियंत्रण पाए जा की लीला की मतनाय सगल देव हरे उगाए पिता के जन्म के जाने पो सगल पुरु

पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कवन तेरी जय करता पेख रहे बिस्मा रहाओ सुखियन मैं सुखिया तू कही है दातन सिर दाता तेजन मैं तेज वंश।

सतगुरु की सेवा न किया गया पछताए, अपनी कृपा करे गुर पाइए विचों आप गवाए, तिसना विचों उतरै सुख पसे मने आए, सदा सदा सलाहिए हिरदे बलाए। श्लोक महला तीजा, जे सतगुरु सेवे अपना तिसनु पूजे सब कोए, सपना पावा सुरु पाओ है हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल सात वसे जप हिरदे सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पैना नानक ना वड्याई होए। महला तीजा, ए मन गुरु की सिख सुन हर पावे पुनि निधान, हर सुखदाता मन वसे हौमे वसे वसे हौमे जाए गुमान, नानक नदरी पाई है तन दिन लागे ध्यान। पौड़ी सत संतोख, सत संतोख मन वसे हमे जाए गुमान, नानक नदरी पाई है तन दिन लागे ध्यान। पौड़ी सत संतोख सब सच है, गुरमुखता द्रुक प्रकार गया मन सज जीता, ते जुत प्रकाश अंदर अज्ञान अगविता, अज्ञान कविता अंदर सर के गुण रवै, गुण प्रगट कीता सवन दाता एक एक हरमिता। श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्रह्मन कही है, जे अंदर हर लिवलाए सतगुरु पुरशे सत्संग भाव, होमे रुख दिस जाए हर गुण ना गावे, गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए सुख मै, कुबिरला ब्रह्म ज्ञानी जे हमे मिट समाए, नानक तस्मै मिलिया सदा सुख पाइए, जे अंदर हर नाम ध्याए। महला तीजा, अंतर कपट मन ज्ञानी, रसना चूत कुलाए, कपट कीते हर पुरख ना पीजै, नित वेखे सुने सुभाए, दूजे भाए जाए जग प्रबोधि विकमाया मूह सुआए, इक माणे सदा दुख पावे, जमे मरै फिर आवे जाए, सहसा मूला चुके विच विस्ता पचे पचाए, जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुरु की सिख सुनाए, हर नाम ध्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत छुड़ाए। पौड़ी जन हुक्म मनाय, पूरा संसार साहिब जी बिना अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा।